ये असनता बराबर सले तनी तन हाजी दी बहने न निमी फड्डी में हंडो कोलो यू हाई लले यानी या हंड मराय यंग ये यानी या सिदिहा फरक के बरसल यानी हन हाजी दी ए फुल लले यानी हन हाजी दी फड्डी में यानी यानी या उम्मत लाय सवका उम्मत तहर में यानी या डड़ो हो राय लाले ए के ए उरिदि यंगुलि दिगी रखा कियाना कादुले हंड मरका दिगरा यानी हन आदया ee hayla leh yando kun ilaali sahni yani yamarat ya selil umarat armi yabaneena inta tanimihi neki tikiyal wagiteniki ee kaadu titaheli ya amoy iba fanaha titahel taatan ummatayin kigi taketani hiya ee sayukhulabi illa fadis inta tani tani nala aada barabar sale tani tan heelulu alu gaabo sinehnan ummatake ee ninni fanala barabar sale tani tan haajidi armi yada yosneena.

0: माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हो दोनों.
1: इट्स अ विग. बिल्ली को जाने दो.